मित्रो आप आनंद रहता वेलिंगटन भारतीय मंडल ना गौरव प्रतीक रेडियो कार्यक्रम आकाशवाणी भारत भर ना आज ना बड़े अंगे ना खास कार्यक्रम नो रेशमी दोरे बंधायेला अतूट प्रेम ने व्यक्त करता आज ना आ यादगार गीतोनो राखड़ीनो नानो दोरो आपने एक सुंदर शीख आपे छे के संबंधोनु साचू सौंदर्य मात्र साथे रहीने मजाक करवा पूरतुं सीमित नथी परंतु दूर रहेवा छताय एकमेकना दिलोमां एकमेकना जीवनमां अने एकमेकनी यादोमां वसवामां छे. रिश्ते वो नहीं जो हर पल साथ रहे, रिश्ते वो है जो हर पल दिल के पास रहे. भाई बहन के अटूट प्यार से यूं ही जीवन पर खुशियों से संसार सजा रहे. आ साथे ज आपने आपना परिवार ने तथारा अमारा भाई बहनों पितराइयों अने मित्रों ने सर्वने रक्षाबंधन नी हार्दिक शुभकामनाओं पाठवता आपनी होस्ट बीना अने नीलिमाना स्नेह सबर प्रणाम. नमस्ते. हैप्पी राखी टू यू ऑल.